0: नमस्कार। बिहान 7 बजे को आधी खुला खबर में प्रविधि कक्ष अशोक संग यहां स्वागत आरती कुंवर स्वांग जिला को पहला आवाज रेडियो आधी खुला को समाचारमूलक प्रस्तुति आधी खुला खबर एफएम 105.4 मेगाहर्ज र www.radioadikhula.org बाट लगन गरेर संसार को जुनसुक स्थान में बसेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूप में सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: इस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईक सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा
0: आधी खुला खबर शुरू कर।

एसएस आदि फ्लाग खबर को साथ में हिमाल सुनचांदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचांदी पसल वालिंग बजार सैंजा

आज मिति 2083 साल असार महीना को 28 गति आईतवार तदनुसार सन् 2026 जुलाई 12 तारीख असार कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी तिथि थी।

0: सुनिए ना, आइले हम लोग आनी माँ 9 बजे छा।
1: इस समय को साथ माँ जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे चोड़िए को डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तरफ जाने बाटो माँ कुना को लाइन माँ
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुंदर हुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है
3: रेडियो आदि खोला 105.4

0: एकै ठाउँबाट पठाएको पैसा तुरन्त भुक्तान दिइने व्यवस्था।
1: फुलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वालिङ फफुन्डे।
2: सम्पर्क फोन नम्बर 0363414624।

एस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंजा।

पहाड़ हिमाल भरी सेती काली तारी सातौ चंडी गरम आलम परिक्रमा गरी संस्कृति को जागरणा कृषि व्यापार शिक्षा सबै तीर छाई रहोस्

0: लाग्यो।
1: हो र मैले नि राम्रो लागेर गोल्ड स्टार को अथराइज शोरूम आरती उज्जवल सुज हाउस वाली नयाँ बजारबाट जुत्ता अनि चप्पल किनेर ल्याए।
0: मलाई नि चाहिएको थियो, आजै त्यही जान्छु।
1: गोली स्टार को आधिकारिक शोरूम अथोराइज शोरूम आरती उज्जवल सुज हाउस वालिङ आठ नयाँ बजार चोकैमा गोली स्टार कम्पनी का पार्टी सुज, स्कूल तथा अफिसियल सुजहरू, स्पोर्ट्स सुज, लेडीज जेन्ट्स सुज तथा जुत्ता चप्पल को होलसेल एवं खुद्रा बिक्री गरिन्छ।
0: गोली स्टार को अथोराइज शोरूम आरती उज्जवल सुज हाउस वालिङ आठ नयाँ बजार चोक।
1: प्रोप्राइटर बोधराज रेग्मी र सरस्वती रेग्मी।
0: मोबाइल 9849618921 र 9842349।

तिनलाई मन पराएर मलाई तर्पाएर दाङका उदयमान नक्षत्र तीर्थक हस्पी पवन विरही पाण्डेको एक तीर्थकता अब शब्द शब्दमा सीआरबीटी नम्बर 01300044 29 सीआरबीटी नम्बर 7045 16 52 स्वर नरेन्द्र प्यासी संगीत संतोष श्रेष्ठ गीतकार एसएन पाण्डे पवन मोबाइलमा सीआरबीटी र पीआरबीटी डाउनलोड गरी

0: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
1: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी को डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में उना को लाइन में
0: विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
2: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।